क्या इनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है? उस सूरत में तो ये लोगों को तिल बराबर भी न देंगे, या जो अल्लाह ने लोगों को अपने फजल से दे रखा है उसका हसद करते हैं। तो हमने खानदान इब्राहिम को किताब और दानाई अता फरमाई थी और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी, फिर लोगों में से किसी ने तो उस किताब को माना और कोई उससे रुका रहा, तो उन न मानने वालों के लिए दोजख की जलती हुई आग काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे, जब कभी उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको और खालें बदल कर देंगे ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, वहां उनके लिए पाक बीबियां हैं और उनको हम घने साए में दाखिल करेंगे।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: कोक स्टूडियो सीजन 9।

अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तैयारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network GFM 88 Network सिंध की आवाज सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network GFM 88 Network सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नई का चीज न आहे लकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा जदीद इंटरचेंज तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध

0: ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी दाढ़ा नियर नई का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू सुगर खां भी दाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी। 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 11 AM. This time check is brought to you by
3: Uncle Habib. Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.

इसराइल लबनान ते हमला बंद न कया त संगीन नतीजा निकरंदा। ईरानी फौज जवाब ॾियण जे लाइ मुकमल तौर ते तयार आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ईरानी फौज धमकी नाहे ॾींदी, फैसलनि ते अमल कंदी आहे। खिते में मौजूद अमेरिकी फौज बि नतीजा भोगींदी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: संगेमील उबूर इफ्तिता शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज, खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ये कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के

0: बात जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास, चेहरे के दाग धब्बे, खिल महासे और बेजानपन। अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाएं साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूम के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-45-01-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
1: छा तमाम समर वेकेशन के फ्रूटफुल बनाया जाया था, छा तमाम सिर्फ

0: बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज ही रुखसार आपका और मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरह का कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है FM88GS अखर आई थिंक, नहीं सॉरी GFM88 के पेज के ऊपर आपको मिलती है लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं बल्कि पोस्ट. उस पोस्ट के नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, सुझाए वहां से आप लोगों के कमेंट्स को प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. अच्छा, इसके साथ साथ हमारा जो सेगमेंट है सुर लगाओ गाना सुनाओ वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल इस सेगमेंट के चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो, वालेकुम अस्सलाम SRH
1: हाफिज लखमीर सलाम मोरो.
0: ओहो, हाफिज लखमीर, देखिए मैंने गलत गेस किया. खैर, हाफिज लखमीर भाई कैसे ठीक ठाक. जी तबीयत ठीक ठाक. मुझे ये बताइए गा के गाना सुनाएंगे, गाना है कोई.
1: जी जी बिल्कुल सुनाएंगे.
0: सुनाए
2: तो मुझे.

0: ओके, ये गाने का टाइटल क्या है और किसका गाना है?
1: ये मनोहर मंटल भलाई का गाना है, तुझे ना ये कसूर गाल नची बजिया।
0: तुझे ना ये कसूर
1: गाल नची बजिया।
0: ओके, और सिंगर क्या बताया?
1: हमारे दोस्त है मोहम्मद ताहिर लून साहब, वजीर अली सोलंकी साहब, हाफिज सावर गिलू साहब और नवान मोहन बत्ती शमानी साहब और जो भी सुन रहे हैं हमारे दोस्त श्याम मोहम्मद अकरो साहब और जो भी सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। 03000 001 3488

0: Okay, the next caller. Hello. Okay, hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikum Assalam, Ismail Kishore. Kaise hai, thik thak?
1: Shukar hai, laga aapne.
0: Alhamdulillah, ji. Itne time baad call kar rahe, lagai nahi thi ya lagi nahi thi?
1: Aap kab se aa rahi?
0: मैं तो ईद के बाद से आ रही हूँ और ईद से पहले मैं आ नहीं रही थी और ईद पे मैं आई थी.
1: ये तो जवाब नहीं हुआ.
0: हाँ, ये है कि मैं एक हफ्ते की छुट्टियों पे चली गई थी वेकेशन.
1: मुझे लग रहा है आपका सिलेंडर ख्याल खराब है. एक हफ्ते नहीं, तकरीबन 15 दिन बाद आई हूँ.
0: अच्छा, 15 दिन बाद आई हूँ मैं. मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 12 दिन बाद आई हूँ, 12-13 दिन बाद.
1: बस वो कहते हैं ना, दिल में जिसको थोड़ी सी जगह दो ना, वो तकलीफ देता है.
0: अच्छा, वो बंदा छुट्टियों पे ना जाए, वो बंदा घूमे नहीं गई.
1: तो बंदा बताया तो सही ना.
0: वो मैं बताऊंगी ना, अपनी पोस्ट के थ्रू बताऊंगी. मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी सब कुछ. देखे मैं कहाँ गई थी, मैं
1: क्या क्या एक्सप्लोर कर रही हूँ. 2 साल से हम वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई पोस्ट नहीं देखी है.
0: अच्छा, अभी जो है ना, ईद की पोस्ट हुई है. हाँ, ये है कि ईद से पहले जहाँ मैं जिस जगह पे घूमने गई हूँ, वहाँ की जो मैंने चीजें एक्सप्लोर की है, वो सब कुछ अभी पोस्ट करना बाकी है. वो कंटेंट अभी बनना बाकी है. और तो मैं कुछ करती नहीं, बस क्या करें, यही तो करते हैं हम कि हम कुछ नहीं करते. अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि गाना सुनाना है, गाना है कोई?
1: जी जी है, एक पर्सनल सॉन्ग.
0: हाँ जी, बोले सुनाए.
1: बोलने वाला नहीं, गाने वाला.
0: अच्छा, गाएं सुनाए.
1: मोहब्बत के भरे बाजार में रुसवा किया तूने, मोहब्बत के भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के, ये क्या सो

0: मेरे नदिया मारी मारी मैं सो सो हारी हारी मेरे नदिया मारी मारी
1: ओके वेरी नाइस. किसी को डेडिकेट करना है?
2: किसी को नहीं.
1: किसी को नहीं. फिर ये ले आपका गाना.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजानपन, अब सबको कहे अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
2: खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई वधाई वई है। जी हाँ, साल 2026 जे लाए दाखलाओं जारी आहिन मुख्तलिफ शोबन में। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स, रियाजी, शुमारियात जड़ा अहम प्रोग्राम्स, ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BA 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला। मुस्तहक शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप भी मौजूद। एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन घट में घट 50% मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी। उम्र की हद 35 साल। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई बताई गई है, लिहाजा देर न करो, ऑनलाइन अप्लाई करो www.apy.bnbwu.edu.pk। गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस करो पिया, हाने परेशान थियण की जरूरत ना है। पेश आहे शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवा के दे ताजगी, सुकून ऐं हकीकी राहत। दिल की धड़कन के मुतवाजन रखण, गर्मी के असर के घटाइण, ऐं जिस्म के तवानाई देण लाइ शरबत रूहे राहत। रोजानो सिर्फ 1 गिलास ऐं महसूस करियो थकावट का आजादी। कीमत सिर्फ 450 रुपया। शरबत रूहे राहत मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखानो, रजिस्टर्ड, फेज मोहम्मद रोड, गोश्त बाजार, गरीबाबाद, सखर। खमीस ऐं जुमो मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखाना, मसान रोड, नज लाला शहजादा चौक, रोहड़ी। राबतो 0302-3626-74।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है. सुर लगा गाना सुनाओ जिसमें हम लेने जा रहे हैं आप लोगों की एक और कॉल. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं यहाँ से?
1: हाफिज
0: सावल भाई, कैसे? ठीक ठाक, परफेक्ट है
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: जी मैं ठीक ठाक हूँ. मुझे ये बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी सर, आपका
0: गाना सुनाएंगे?
1: जी जी.
0: तो सुनाए.
1: मंताज मलाइका का फोन है.
0: हाँ जी.
1: तो के तो यार हरा तो जसी गार हरा तो के तो हार
0: तू जो सिंगार ठरा. ये गाने का नाम है?
1: ये तो कैसे यार ठरा ये खड़ा.
0: ओके, तो सा
1: मेरे दोस्त है.
0: हाँ जी, ये मैं सर्च कर रही हूँ.
1: हाँ तो झलक में जो भी सर
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज. 03000 11348. ये वाला गाना मैं देख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ.

0: ओके जी, एक और कॉलर लेने जा रहे हैं नेक्स्ट. चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से.
1: आपसे सरिता चर लड़का से आपका बेहतरीन प्रोग्राम जिंदगी तैयार सुन रहा हूँ.
0: ओके, गाना सुनाएंगे.
1: फरजाना बार का गाना है लगी प्यार दिल का दिल तो महबूब भली माना करमा. ये गाना सुनाओ. आप नहीं सुनाती हो मेरा गाना.
0: अभी लगाते हैं, अभी लगाते हैं.
1: आपकी मेहरबानी. आप अपना ख्याल रखो. सदर
0: ओके जी, और कुछ कहना चाहेंगे.
1: नहीं देखो यार, पंतानवे ब्रेक खाना हुआ नमस्ते.
0: चले जी, थैंक यू सो मच. और ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बट गुजारा करेंगे. हाँ

और गाना प्ले कर चुकी हूँ, साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर भी बताऊंगी। काशिफ ने कच्ची कलियां कांच के कटोरे में केयरफुली कमाल से रख दी, ठीक है ये कहना है, काशिफ ने कच्ची कलियां कांच के कटोरे में केयरफुली कमाल से रख दी।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईंदड़ हफ़्ते ताईं ईरान सां वादो थियण जे लाइ पुरमी तहरान सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त कंदो ऐं नई फ़ौजी में वाधि थींदी ऐं अब्दा हरबूद में बि पहिरीं ट्रैफिक बहाल थी वेंदी। अमेरिकी सदर बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो ॾखण लबनान ते हमला जारी रखण जो ऐलान। बैरूत ते बि हमलनि वारी धमकी बरक़रार।

चर करा ॾेई छॾियो। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिब ट्रंप नेतन्याहू खे लबनान ते हमला जारी रखण ते धड़का ॾिना। छोकिरनि जो चयो सदर ट्रंप चयो त आउं तुंहिंजी खल बचायो आहियां, आउं न हुजां त तूं करप्शन केस में जेल में हूंदी हा। ट्रंप जी ॻाल्हि ॿुधो नेतन्याहू रुगो ओके ओके चवंदो रहियो। इसराइल लबनान ते हमला बंदि न कया त संगीन नतीजा निकरंदा। ईरानी फ़ौज जवाब ॾियण जे लाइ मुकमल तौर ते तयारु आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ईरानी फ़ौज धमकी न ॾींदी, फ़ैसले ते अमल कंदी आहे। ख़िते में मौजूद अमेरिकी फ़ौज बि नतीजा भोगींदी। पाकिस्तान पारां लबनान ते इसराइली हमलनि जी सख़्त मज़म्मत। लबनान ते हमला फौरी तौर रोकण जो मुतालबो। गॾियल क़ौमुनि में पाकिस्तान जे मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिम इफ़्तिख़ार चयो आहे त पाकिस्तान लबनान ते इसराइली हमलनि जी सख़्त मज़म्मत करे थो। इसराइली हमला आलमी कानूननि जी भञकड़ी आहिनि, जटादार अमन रुगो ॻाल्हियुनि वसीले ई मुमकिन आहे। पाकिस्तान लबनान जी हुकूमत वारा यकजहतीअ जो इज़हार करे थो। पाकिस्तान शिकार जे ख़ात्मे जे लाइ पंहिंजी सफारती कोशिशूं जारी रखंदो। डरकी बस रेलवे ट्रैक तां औरत ऐं ॿार जो लाश थे सुञाणप न थी सघी। पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल करे जांच शुरू करे छॾी। रेलवे पुलिस चयो आहे त लाश माउ ऐं ॿार थी सघनि था जेके राति जो देर सां ट्रेन मां किरी पहुता आहिनि। वधीक जांच करे रहिया आहियूं। वापदा जी इम्कानी निजकारी ख़िलाफ़ मुलाज़मनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। वापदा मुलाज़मनि टंडवादम, बडीदन, सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा कया। वापदा जी निजकारीअ वारो फ़ैसिलो वापसि वठण जो मुतालबो। वापदा मुलाज़मनि चयो त इदारो खांगाइण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। फैज़गंज तालुके में बदमीअ ख़िलाफ़ महिराण हाईवे ते शहरनि जा टिनि हंधनि ते धरणा, ट्रैफिक अटल, गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वियूं। शहरनि फैज़गंज में वधंदड़ बदमीअ ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे महिराण हाईवे जे टिनि हंधनि ते धरणा हया। तालुके में अमन बहाल कराइण जो मुतालबो।

0: नसीराबाद जो गोठ खारी कलोड़ो बाहर दरई जमीन ता पीरसन जो लाश हथ गोठ मिठल चा निवासी पीरसन मोहम्मद परेल चांडी जो तशद लाश मिलियो। मतूल जे वासन चवाए त संगावती तकरार था बिरादरी जे माण्हुनि तशद करे पीरसन खे कतल कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। सेठा जामे हथियारबंदनि घणा सॾे क़तल कयल नौजवान जे वारसनि जो मिरान हाईवे ते लाश रखी धरणो। मक़तूल अली ढींगो जे वारसनि जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर। हुकूमत सिंध।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू अब, और कॉल्स के साथ साथ मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू भी. तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03-000-11-3488. और कमेंट करने के लिए हमारा पेज है GFMET8. सिंपली आपने सर्च करना है जी फेसबुक के ऊपर, वहां पे आपको पेज मिलेगा, पेज के ऊपर पोस्ट मिलेगी, पोस्ट के नीचे कमेंट्स करने हैं, ठीक है. इसके अलावा 888-1 पे भी मैसेजेस किए जा सकते हैं. अच्छा, साथ साथ कमेंट्स को इंक्लूड करते हैं. तो इस्माक किशोर हमारे साथ साथ मौजूद है, इस्माक किशोर हमारे साथ मौजूद हैं और कमेंट कर रहे हैं. और इस्माक किशोर कहते हैं, मुबारक को पोस्ट मिल गई, कौन सी, फेसबुक वाली या इंस्टाग्राम वाली, कौन सी वाली मिली. हुसैन मलिक हमें सुन रहे हैं, कहते हैं हाय. नजीर खोसा सोबरपुर बलूचिस्तान से हमें सुन रहे हैं. मोहम्मद मीरन जखरानी हमें सुन रहे हैं. मोहम्मद साली लगारी हमें सुन रहे हैं लटको मोरी से. नजीर खोसो हमें सुन रहे हैं, थैंक यू आप सबका. अच्छा, कॉल भी आ रही है आप लोगों की बहुत सारी, तो कॉल्स लेते हैं. फर्स्ट कॉल इस सेगमेंट की. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है?
1: ईद मुबारक जानमन.
0: अरे मिसेज अली बात कर रही है. मिसेज अली कैसी ठीक ठाक?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जानमन, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं क्या हाल चाल है? आपको भी ईद मुबारक. बासी वाली गोश्त वोश्त खा लिया आपने? गोश्त वोश्त खा लिया?
1: दार में दर्द हो गया है.
0: आए हाय, ये सब सबके हुआ है इस बार.
1: फिर लास्ट में ना हुआ है, फिर लास्ट में क्या किया ना, जो उससे बचा के था उसका कीमा बनवाया.
0: बहुत अच्छा किया,
1: ताकि खाने में आसानी हो.
0: हाँ, खाने में आसानी हो. और
1: आपने ईद की जानमन?
0: हाँ जी, मैंने ईद की.
1: ईदी जमा की?
0: नहीं, ईदी जमाने की किसी ने दी नहीं.
1: अरे क्यों?
0: बस किसी ने दी नहीं, सबने कहा कि आप हमें दें. अब तो आप देने वाली है, लेने वाली थोड़ी है. इसलिए ना मुझे किसी ने दी नहीं.
1: अगर मैं आपके साथ होती ना, मैं आपको देती
0: थी. वो ना मैं बहुत संभाल के रखती, पता है? अगर कोई मुझे अब ईदी देगा ना, मैं उसको बड़ा संभाल के रखूंगी, मैं उसको खर्च भी नहीं करूंगी. मुझे बस ये है कि ईदी दे दे.
1: बरकत की ईदी होगी ना, जब मेथड लोग आपको देंगे.
0: अच्छा, चलो ठीक है जी, ठीक है, जबरदस्त. अच्छा, टंग ट्विस्टर सुना है मिसेस अली?
1: जी जानवल. काशिक में कच्चे लिए कांसे के दौर में केयरफुली कमाल से रखती, काशिक में कच्चे लिए कांसे के दौर में केयरफुली कमाल से रखती, काशिक में कच्चे लिए कांसे के दौर में केयरफुली कमाल से रखती, काशिक में कच्चे लिए कांसे के दौर में केयरफुली कमाल से रखती, काशिक में कच्चे लिए कांसे के दौर में केयरफुली कमाल से रखती, काशिक में कच्चे लिए कांसे के दौर में केयरफुली कमाल से रखती, काशिक में कच्चे लिए कांसे के दौर में केयरफुली कमाल से रखती, काशिक में कच्चे लिए कांसे के दौर में केयरफुली कमाल से रखती, काशिक में कच्चे लिए कांसे के दौर में केयरफुली कमाल से रखती,
0: वेरी नाइस. इतनी स्पीड आती जा रही है, इतने दिनों बाद आई है और इतनी स्पीड आ रही है. तो मुझे बताएं क्या खा के आई है?
1: आपका असर है, आपका असर है.
0: मेरा असर है? अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा असर है.
1: आपकी मोहब्बत का असर है?
0: बस देख ले, ये असरात कम नहीं होने चाहिए. चले
1: इंशाल्लाह.
0: ओके, अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज जानमन.
0: ओके, 03-000-11-3488. नेक्स्ट कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. सागर बात कर रहे हैं, सागर भाई.
2: जी जी, मैम सागर बात कर रहा हूँ.
0: टंग ट्विस्टर सुनाए, सुर लगाएंगे टंग ट्विस्टर में?
2: सुर तो लगाऊंगा मैं. गाने का सेगमेंट खत्म हो गया?
0: गाने का सेगमेंट खत्म हो गया.
2: वेरी गुड फॉर मी.
0: ओके, मुझे बताएं.
2: हाँ,
0: टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके से है कि आपने कहना है. किधर गया टंग ट्विस्टर मेरा? किधर गया? देखिए, मेरा टंग ट्विस्टर गुम हो गया, और जब मैं टंग ट्विस्टर ढूंढती हूँ तो वो गुम हो जाता है. खैर कोई बात नहीं, हम टंग ट्विस्टर को ढूंढ लेंगे. और टंग ट्विस्टर आज का कुछ इस तरीके से है कि आपने कहना है, काशिक ने कच्ची कलियां कांच के कटोरे में केयरफुली कमाल से रख दी.
2: काशिफ ने
0: कच्ची कलियां कांच के कटोरे में केयरफुली कमाल से रख दी।
2: कच्ची कलियां
0: कांच के कटोरे में केयरफुली कमाल से रख दी।
2: केयरफुली
0: हाँ यस
2: केयरफुली
0: कमाल से रख दी।
2: कमाल से रख दी
0: यस।
2: चलो ये सुना।
0: हाँ जी
2: काके

0: कमाल रख दे।
1: अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ा अच्छा सुन रहे
0: हैं जो आप जो सुना दिए ना टंका शहर, तो मैं अभी बैठा हूँ खैरपुर में ये एफएम नहीं चलता है, कॉल लग रही है एफएम नहीं चलता है, तभी मैं आपसे पूछता हूँ,
1: चलें
0: कभी मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या है।
1: अच्छा जी बात है, चलें कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि क्यों होता है और क्यों नहीं चलता है।
0: और आप जैसे सुना दिए टंका शहर, वो मैं लिखता हूँ पन्ने पे।
1: अच्छा साथ साथ लिखते हैं, चले कोई बात नहीं,
0: बार बार मैं आपसे पूछता रहता हूँ कि क्या है क्या है क्या है, वो लिखता रहता हूँ, ऐसे मैं भूल जाऊंगा।
1: चले जी, थैंक यू।
0: सुर नहीं लगेगा ना, ऐसे सुर नहीं लगेगा ना।
1: हाँ सुर नहीं लगेगा ना, ये बात है। और कुछ कहना है?
0: नहीं मैं बस वो कह दिया जो कहना था वो कह दिया, आपका दामन हमेशा खुशियों से भर दे।
1: आमीन जुम्मा आमीन, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें भाई अपना, अल्लाह हाफिज। ओके जी, ये थे स्वीट कॉलर जिन्होंने हमें टंग चश्मे कह के दिखाया, और हम मूव करना चाह रहे हैं, यानी कि हम सब मूव करना चाह रहे हैं एक गाने की तरफ, एंड द सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इसको हम जो है ना लिरिक्स में प्ले करेंगे, और लिरिक्स में प्ले करेंगे और फिर सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और इसी के साथ आगे चलेंगे। अरे गाना डबल हो रहा है, नहीं होगा।

0: पाकिस्तान की शान मैव 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: बी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रोबीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो बी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ़ अमल है अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील छह रोया जदीद

0: का सिग्नल फ्री। शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा। शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर। हुकूमत सिंध।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजान पन, अब सबको कहे अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से बेस्ट लुक ब्यूटी सोप के असर हो। दिल कॉस्मे एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूम के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343-03-45-01-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
2: यार मछा क्या, किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी।
3: जो भला छा छा तुखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
2: यार एक मसलो

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गई मारू सुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अच्छा आपका कमेंट पढ़ रही हूँ. कहते हैं समझ नहीं आता, जरदल कहती है आपका असर है, मिसेस अली कहती है आपका असर है, लेकिन आपकी तो लिखी हुई पर्ची भी नहीं मिलती. क्या कहूँ मैं. हुसैन मलिक हमें सुन रहे, कहते हैं आपको भी मोहम्मद में सुन रहे हैं. और अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ हमारे पेज को तो और भी बहुत सारे कमेंट्स मेरे सामने आ जाएंगे आ जाते हैं. ठीक है, आज का टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा किसने बोला है बताऊंगी. मिसी फ्रॉम लाड़का नाम कहती है आई लव यू सो मच, मैं ये बोलना भूल गई कॉल पे. ओके कोई बात नहीं, अब आप कसर पूरी कर दी, कॉल पे भूल गई थी आप है. और इसके आप लिए जार और साथ साथ अच्छा पर्ची भी नहीं मिलती जिसमें टंग ट्विस्टर लिखा होता है, इसको एडिट कर दिया है अब आपने इस मार्क के शो में. सोचूं कौन सी पर्ची. अच्छा वो पर्ची पे नहीं होता, वो असल में मेरे फोन पे ही जो है ना खुला होता है सब कुछ. सो वो एकदम से जो है ना गारी होती हूँ फोन पे, ट्विस्टर ना घूमो. अच्छा खैर गाना हम प्ले कर रहे हैं, गाना बहुत अच्छा है, सुनेंगे एंजॉय करेंगे आगे चलेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज।
2: खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सक्कर में फॉर्म जमा कराने जी आखिरी तारीख है 5 जून 2026 ताई वधाई वैया है। जी हाँ, साल 2026 जे लाए दाखलाओं जारी आहिन मुख्तलिफ शोबन में BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी,

अब मुझे जाना पड़ेगा और लास्ट में हम प्ले करेंगे इमरान खान की आवाज को और इसी के साथ फाइनली आप चलेंगे इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आपसे दोबारा चुटचाट होगी 7 से लेकर 8 बजे तक, एक घंटा नॉन स्टॉप. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईंदड़ हफ़्ते ताईं ईरान सां वाइदो थियण जे लाइ पुरउमीद। तहरान सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त पैगामनि जी मुअतली थी ईरान मथां बम किराए नथा सघूं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऐं हिज़्बुल्लाह सां लबनान में जंगबंदीअ ते इतफ़ाक़ थियो आहे। इसराइल बैरूत ते हमला न कंदो ऐं नई फ़ौज मोकिलींदो। ईरान सां मुआहिदे बाद जंगबंदीअ में वाधि थींदी ऐं अबना हरमूज़ में बि बहरी ट्रैफ़िक बहाल थी वेंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जे रोकण बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो लबनान ते हमला जारी रखण जो ऐलान। बैरूत ते बि हमलनि वारी धमकी बरक़रार। ईरान लबनान ते हमला जारी रहण ते अमेरिका सां ॻाल्हि रोकण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालेबाग ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम वज़ीदी चयो आहे त इसराइल लबनान ते हमला बंदि न कया त संगीन नतीजा निकरंदा। हिते में मौजूद अमेरिकी फ़ौज बि नतीजा भोगींदी। अलकुदस फ़ौज जे कमांडर इस्माइल कानी चयो आहे त लबनान ऐं गज़ा में इसराइली कार्रवायूं मज़ामत ते मजबूर कंदियूं। बाबर मंदब में बि आबना हरमूज़ जहिड़ी सूरत हाल पैदा थी सघे थी।

बचाए रहे हो जहाँ तू करप्शन केस में जेल में हुजी हा तब जी गाल मदा नेतन्या हु रुगो ओके ओके चवंदो रहो पाकिस्तान पारां लबनान ते इसराइली हमलनि जी सख़्त मज़म्मत लबनान ते हमला फौरी तौर रोकण जो मुतालबो गॾियल क़ौमुनि में पाकिस्तान जे मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार चयो आहे त पाकिस्तान लबनान ते इसराइली हमलनि जी सख़्त मज़म्मत करे थो इसराइली हमला आलमी कानून जी भनेकड़ी आहिनि जटादार अमन रुगबानी वसीले ई मुमकिन आहे पाकिस्तान लबनान जी हुकूमत अवाम सां यकजहतीअ जो इज़हार करे थो पाकिस्तान शिकतार जे ख़ात्मे लाइ पंहिंजूं सिफारती कोशिशूं जारी रखंदो।

कराची प्रेस क्लब आॾो सिंध पेंशनर्स ग्रैंड अलायंस ऐं ग्रेवा सिंध तरफ़ां मुतालबनि जी मञता लाइ एतिजाज़ ग्रुप इंश्योरेंस पघार में हिकु जेतिरो जेतिरी वाध करण जो मुतालबो रिटायर्ड मुलाज़िमनि चयो त मुतालबा जाइज़ आहिनि हुकूमत सिंध सरकार रिटायर्ड मुलाज़िमनि जा मुतालबा तस्लीम करे

0: नरकी भरसा रेलवे ट्रैक ता औरत ऐं ॿार जो लाश हथे सुञाणप नथी सघी। पुलिस लाश अस्पताल मुंतकी करे जांच शुरू करे छॾी। रेलवे पुलिस चयो आहे त लाश माउ ऐं संदसि ॿार जा थी सघनि था, जेके राति जो देर सां ट्रेन मां किरी फोत थिया हुजनि। वधीक जांच करे रहिया आहियो। बाबरा जी इम्कानी निचकारी ख़िलाफ़ मुलाज़मन जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। बाबरा मुलाज़मन खैरपुर, सखर, सेवन, दादू, टंडवादम, परीदन, सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा कया। बाबरा जी निचकारी वारो फ़ैसिलो वापसि वठण जो मुतालबो। बाबरा मुलाज़मन चयो त इदारो ख़ान करण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। फैज़गंज तालुके में बदमनी ख़िलाफ़ महिराण हाईवे ते शहरनि जा टिनि हंधनि ते धरणा, ट्रैफ़िक मुअतल, गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वियूं। शहरनि फैज़गंज में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे महिराण हाईवे जे टिनि हंधनि ते धरणा आया। तालुके में अमन बहाल कराइण जो मुतालबो। नसीराबाद वेझो ॻोठ खदाई करोड़ा ॿाहिरां ज़रई ज़मीन तां पीसण जो तशद थियल लाश थे। ॻोठ मिठल चांडियो वासी पीसन मोहम्मद फरियल चांडियो जो तशद थियल लाश मिलियो। मक़तूल जे वारसनि चयो आहे त संगावती तकरार सां बिरादरी जे माण्हुनि तशद करे पीसन खे क़तलु कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: सुनिए GAFM रेडियो, गाने मस्त।
4: एक और संगे मील उबूर। इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर। हुकूमत सिंध।

के लिए बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर कलाम आप सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ है। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग, तो जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तो लोगों को वेलकम कहा जाता है। और आज के प्रोग्राम के जरा टॉपिक की जाने बातें, तो आज का जो मेरा टॉपिक आप लोगों से होने वाला है वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा वो ऐसे, क्योंकि ये सीन जो मैं सोच रही हूँ ये कभी ना कभी तो हमारी जिंदगी में लाजमी हुआ होगा। मेरे साथ तो बहुत मरतबा हो चुका है, लेकिन आप जरा आज अपनी बताएंगे कि आपके साथ हुआ या नहीं हुआ। तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है वो बिल्कुल ये होने वाला है कि आप मुझे बताएंगे क्या कभी आप लोगों ने ऐसा है कि अपने घर एंटर होते वक्त हीरो वाली एंट्री मारी हो, हीरोइन वाली एंट्री मारी हो, आपको ये लगता हो कि भाई मैंने तो बड़ी अच्छी वाली एंट्री मारी है, लेकिन ऐसे ही साथ ही सामने आपके जो है ना आपके घर में मेहमान बैठे और आप जरा शकी थी आयो तो अक्सर ही थींदो आहे जॾहिं घर में एंट्री मारींदा आहियूं ऐं असांखे लॻंदो आहे त असां दिलि में सोचींदा त असां हीरो वारी एंट्री मारी आहे, पर सामने जॾहिं असां ॾिसंदा आहियूं त महिमान वेठा हूंदा आहिनि ऐं पोइ असां थोरो लॾी थींदा आहियूं। इहे कई मरतबा मूंसां थी चुको आहे, तव्हां अॼु मूंखे ॿुधायो त तव्हां सां ईअं थियो आहे या सिर्फ़ मूंसां ईअं थियो आहे, पर मूंखे लॻंदो आहे त जेके जेके चीज़ूं मूंसां थियूं आहिनि उहे चीज़ूं तव्हां सां बि लाज़मी थियूं आहिनि। सो मूंखे ॿुधाईंदा अगरि तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया पहिरीं मरतबा रोज़ाना या फिर आप घुने वाले लिसनर्स, यानी कि चोरी चोरी चुके चुके सुने वाले लिसनर्स, जनाब क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल को राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे इलाके स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे 8881 पर। तो जल्दी कीजिए जी, मैसेज भेजिए। उसके साथ साथ अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है। और जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज को आपने क्या करना है, पेज को आपने फॉलो कर लेना है, पेज को आपने जैसे ही ऑन करना है ओपन करेंगे तो आप लोगों को हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। जब भी आप पोस्ट को जितना ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे ना उतना ज्यादा मजा आता है और उतने ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाती है। तो जितना ज्यादा हो सके हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए। दोस्तों को भी मेंशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जल्दी से कीजिए। और साथ साथ आप मुझे बताइए कि क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप तहश में आ चुके हैं, घर आए हैं, आपने हीरो वाली एंट्री मारी है, दरवाजा खोला है और आपके

0: कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते जाइए. जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरती को बढ़ाते जाइए, क्योंकि खूबसूरत होना और हसीन दिखना ये आप डिजर्व करते हैं. ओके जो गुड़गुड़ तमाम मैसेज आन आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम असलम, मैं ठीक आप बताएं आदिल, आप कैसे हैं? लगते हैं कि पांच खिलाफ गालियों खामोशी से बुधो जवाब दियण वक्त ते छे दियो, वक्त एक बेहतरीन इंतकाम जो नालो आए. बिल्कुल जी हकीकत आए. नजीर खोसो में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, भाईजान आपको वेलकम करते हैं. और रमेश कुमार कोहली हमारे साथ हैं थरपारकर से, भाईजान हमें सुन रहे हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं. और आदिल कहते हैं कि हर तवज्जा देने वाला शख्स इग्नोर करने में माहिर होता है, कोशिश करें जब कोई आपको तवज्जा दे तो उसे हजम करें, वरना अगर नौबत इग्नोर करने की आए तो आपको अपनी मौजूदगी पर भी शक होने लगेगा. याद है हकीकत आप बिल्कुल. और हिदायतुल्ला अहमद आनी लगते हैं, सलाम कैसी हो सिदरा, आज शादी है और पता नहीं अच्छा अभी तक ये ड्रामा चल रहा है मुझे लगा खत्म हो गया होगा. चलें जी आप एंजॉय कीजिएगा शादी. और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, आपने थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी और हीरो के बजाय वो जो ना दूसरे लड़के को मिल गई थी और हमने बेचारे हीरो के नाम जो ना वो गाना डेडिकेट कर दिया था कि हीरो भाई की शादी हो रही है. आज पता नहीं किसकी किसके साथ शादी होगी ये नहीं पता, लेकिन हाँ हम गाना चला देंगे, रेंडमली गाना लगाएंगे, वो बस किसी को भी डेडिकेट जाएगा. और अली अकबर बरोई भाई हमें सुन रहे हैं, सकरण से आपका भी वेलकम एंड खुश आमदीद कर देते हैं. अयाज अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं, अयाज अली खास के लिए भाई आपको भी वेलकम करते हैं. और मोहम्मद जमान आ चुके हैं, मोहम्मद जमान भाईजान वालेकुम अस्सलाम खुश आमदीद. और उसके अलावा हैं जी दर्दे दिल हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम कैसी है मेरी प्यारी. और ऐसे ही आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, ज्वाइन करते जाइए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए. और मुझे बताएंगे क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि आपने घर आते हुए हीरो और हीरोइन वाली एंट्री मारी है, लेकिन आपको पता तब चला जब घर में सामने मेहमान बैठे हुए और आप थोड़ा सा एम्बैरस हो गए. मुझे बताइए जल्दी से, और इसी के साथ साथ टाइम हो जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाया जाए, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपका हमारे साथ पूरी पूरी तीन बजे तक आप सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो.
1: वतन की मोहब्बत से सरशार, अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6.
3: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर।

0: सिंध।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद यहाँ पर सखर, मोरो, मीरप्रकाश, मटियारी, सकरंड, मेहरापुर, मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है मेरी जान व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल जी करते रहिए और साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी कराते रहिए। और उसके साथ साथ मुझे भी बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं और कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिला है, क्या चल रहा है, बताइए ना। इतनी ज्यादा ऐसी बातें जो है ना वो छुपाया नहीं करते, छुपानी नहीं चाहिए, बता देनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, देन आपने डायल करना है 03-15-799-0595। अच्छा जी, तो आने वाले लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। उसके अलावा आप फेसबुक वाले लोग जो है ना वो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। मैंने आज आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं कि क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप घर में आए, एंट्री मारी भाई हीरो हीरोइन वाली और आपने सामने ही देखा तो मेहमान बैठे थे और आप उन्हें देखकर थोड़ा सा एम्बेरस फील कर चुके हैं। ये सीन क्या आपके साथ हुआ है या नहीं, ये मुझे आज आप बता रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आप ये भी मुझे बता रहे हैं। तो व्हाइट एश प्योरी प्रोडक्ट्स का जरा आप लोगों के साथ खुलासा करते हैं। तो व्हाइट एश प्योरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आप लोगों को हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। यानी कि जब मैं आप लोगों को बताती हूँ ना व्हाइट एश प्योरी प्रोडक्ट्स के बारे में तो यकीन माने मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि इतने शानदार और इतने जबरदस्त क्वालिटी के और इतना अच्छा यानी कि उन्होंने सोचा है कि हर तरह के लोगों के लिए प्रोडक्ट होना जरूरी है। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों के लिए, चाहे आप साबुन लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, एक्नी क्रीम लगाते हैं, फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, नाइट क्रीम लगाते, जो भी चीज लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, वो सारी चीजें भाई इन्होंने ऐड कर दी हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को सबसे पहले जी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मिल रही है और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम और व्हाइट एश लवली क्रीम, इन दोनों क्रीमों में फर्क यानी कि आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि जब आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है ये एक नाइट क्रीम है, यानी कि इसे रात के टाइम लगाया जाता है। और नाइट क्रीमें जो होती है ना वो ऐसा होता है कि भाई आप लोगों की स्किन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप लोगों के चेहरे पर मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं, दाने आ चुके हैं, रिंकल्स आ चुके हैं, फेयरनेस जो है ना वो कहीं गायब हो चुकी है, स्किन थकी थकी सी लग रही है, मुरझाई सी लग रही है, ग्लो कहीं गायब हो चुका है, तो आपको नाइट क्रीम की जरूरत होती है। तो इस सूरत हाल में आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि फुल नेचुरल अजा से तैयार की गई है, इसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है जो कि आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोगों की स्किन को फ्रेश बनाती है, फेयर बनाती है और आपके चेहरे के पर जितने भी ये मसाले वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताना है कि व्हाइट एश लवली क्रीम का क्या काम है। तो व्हाइट एश लवली क्रीम उन लोगों के लिए है जैसे आप नाइट क्रीम सिर्फ 18 साल के बाद लगाने वाले लोग होते हैं, 18 साल से कम वाले लोग नहीं लगा पाते हैं। वो ऐसा कि 18 साल से कम वाली जो स्किन होती है ना वो थोड़ी सी बेबी टाइप स्किन होती है, तो उसके ऊपर आप जो ना फेयरनेस क्रीमें लगाया करें, उसके ऊपर आप नाइट क्रीमें नहीं लगाया करें। तो अगर आप ये अदर बाकी जो लोग हैं, जो लोग 18 साल से बड़े हो चुके हैं, 18 साल उनकी उम्र हो चुकी है, तो वो नाइट क्रीम लगा सकते हैं। बाकी अगर आपकी उम्र जो है वो छोटी है और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर ग्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपकी उम्र 18 साल से कम है तभी आप व्हाइट एश लवली क्रीम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ये हर उम्र का इंसान लगा सकता है, यानी कि अगर आपकी उम्र जो है वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, टीनेजर हैं, जिस भी उम्र में आप हैं, तो व्हाइट एश लवली क्रीम आप लोगों के लिए, क्योंकि एक फेयरनेस क्रीम जो होती है ना ये आप लोगों की स्किन के लिए बड़ी जरूरी होती है, आप लोगों की जिंदगी को जो है ना वो अच्छा महसूस करती है, क्योंकि जब आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती रहती है तब आपको महसूस होता है कि वाकई भाई आप लोगों की स्किन को फेयरनेस क्रीम की जरूरत है। तो अगर गर्मी का मौसम है, आप मेकअप नहीं लगा पाते हैं, मेकअप को जरा रिप्लेस करना चाहते हैं किसी अच्छे वाले प्रोडक्ट के साथ, तो आपके पास व्हाइट एश लवली क्रीम मौजूद होनी चाहिए, जबी तो बात बनेगी। तो व्हाइट एश लवली क्रीम आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये जनाब रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन्स का फार्मूला है। 30 वाइटामिन्स के कैप्सूल इसके अंदर एड की गई है, जैसे कि वाइटामिन डी है, वाइटामिन ई है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन B3 है और इसके साथ साथ इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है। तो सनस्क्रीन जो होती है ना ये आप लोगों की स्किन को धूप से बचाती है,
جو دھوکے سے خطرناک سے اثرات آپ کے چہرے پر آتے ان چیزوں سے بچاتی ہے. تو ایک ہی چیز کے اندر, ایک ہی پروڈکٹ کے اندر آپ لوگوں کو اتنے سارے فائدے مل رہے ہیں, تو میری جان آپ کیوں نہیں استعمال کر رہے. ایک مزے کی بات بتاؤں کہ وائٹش لولی کریم تو بھائی میں خود استعمال کری ہوں, میرے گھر میں اس کے سارے لوگ فین بن چکے ہیں. کہ آپ بھی استعمال کریں, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی کتنی اچھی فیئرنیس کریم مارکیٹ میں آ چکی ہے اور آپ کو بھی اپلائی کرنی چاہیے. تو اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, یا پھر آپ اسٹوڈینٹس ہیں, پڑھاتے ہیں, پڑھنے والے لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے وائٹش لولی کریم کا استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ خوبصورت بھی ہوتی رہے گی, گلو بھی ملتا رہے گا, اور آپ کی اسکن پروٹیکٹ بھی رہے گی دھوپ سے, اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ جس کے اوپر میں اگر بیٹھوں تو میں پورا پروگرام جو ہے نا وہ اس کے اوپر کر سکتی ہوں, لیکن ایسا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروڈکٹس ہیں. تو اس کے لیے اتنی سی تعریف جو ہے نا وہ کافی ہے. ویسے تعریف بھی ان چیزوں کی جاتی ہے واقعی جو تعریف کے قابل ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایکنی سے سفر کر رہے ہیں, بہت زیادہ ایکنی آپ کے چہرے پر ہے, تو آپ کے لیے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب بھی موجود ہے. اور ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب جو ہے نا یہ وہ لوگ استعمال کریں گے جن کے چہرے پر دانے آ جاتے ہیں. دانوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب موجود ہے, جسے آپ اپنے کریم کے اندر بھی ایڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. آپ اکیلا استعمال کرنا چاہتے تو اکیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لیکن استعمال کرنے سے پہلے جو ہے نا یہ چیزیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ خیال رکھا کریں. وہ یہ کہ آپ نے اپنا فیس واش کرنا ہوتا ہے, جو کہ وائٹش بیوٹی سوپ سے کریں گے یا پھر وائٹش فیس واش سے کریں گے, جو کہ وائٹامن سی سے تیار کیا گیا ہے. بالکل نیچرل اجزاء سے تیار شدہ ہونے والے پروڈکٹ ہیں. آپ بس استعمال کیجئے دل کھول کر اور اپنی خوبصورتی کو بڑھتا ہوا دیکھیے, کیونکہ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ خوبصورت رہے اور آپ ہمیشہ گلو کرتے رہیں. تو گلو کرتے رہیں, خوبصورت رہیں اور خوش رہیں. اسی کے ساتھ ٹاپک کو فالو کرتے رہیں اور ساری ساتھ جو ہے نا میں آپ لوگوں کو گانے بھی سناؤں گی. بالکل سی گانے ہماری لسٹ میں موجود ہے تو ہم گانے سنیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ ڈائل کرتے جا رہے ہیں 03157990595. میں دیکھ رہی تھی نمبر, میں نے کہیں غلط تو نہیں بتایا, صحیح بتایا. تو 03157990595 ڈال کیجیے, اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرائیے اور انہیں بتائیے کہ آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وائٹش بیوٹی پروڈکٹس, جس میں وائٹش بیوٹی کریم ہے, وائٹش لولی کریم ہے, وائٹش سوپ ہو, وائٹش فیس واش, یا پھر وائٹش کی ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب. یہ تمام پروڈکٹس آپ ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں, مناسب سی قیمتوں میں آپ کو مل رہے ہیں, تو فائدہ اٹھائیے.

जेको आहे उहा स्लिप थी वई आहे, छो त माण्हू सोनो ॾिसी जेको आहे न वरितो अथई। अगरि तव्हां बि सोना माण्हू ॾिसण चाहियो था या अगरि तव्हां पाण सोना माण्हू थियण चाहियो था त तव्हां व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कयो। इहा त हक़ीक़त आहे, जॾहिं तव्हां व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा पोइ तव्हां सोणा सोणा थी वेंदा। ऐं तव्हांजा मैसेजेस आहिनि बिल्कुलु फेसबुक वारा माण्हू पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो, ख़बर पवे रश लॻी पई आहे। हाँ बस दादला थोड़ा सा याद लाया करे बाकी सब खैर है। और ये स्मार्टू गोपांग हमारे साथ मौजूद है। हाय हेलो, कंबर सिटी से आप हमें सुन रहे हैं, शो इज वेरी नाइस, गानो चाहिए हुआ तुम हलाने की कोशिश करना सी। उनका अलावा आदिल कहते हैं कि सर सिद्रा आज ये लास्ट में गाना लगाइएगा। बिल्कुल जी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। एसन कहते हैं ओ हेलो माय फेवरेट आज है, इच्छा हला उम्मीद तक खुश हूं दो, शाद हूं दो, आबाद हूं दो, याद हूं दो, नई विसरंदो ये सफर। अच्छा नजीबुल्ला बिरोही हमारे साथ हैं, हेलो नूरिसन तुनियो भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, हम हमेशा सलामत रखे। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा थोड़ा मैसेज डिफरेंट होगा लेकिन ये सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अच्छा लुबी हमारे साथ है, लुबना क्या कहती है, अस्सलाम वालेकुम सिडुट जानी, क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ, वेलकम वेलकम मेरी प्यारी परी, आपको वेलकम कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय अदा स्मार्ट हाजिर आवाज कमेंट लिस्ट में ढो भलो कर वाला मां सोचा पे को नहीं था शायद तुम। अच्छा नूरे सिंह तुनियो भाई बिल्कुल तुम्हारा गानो हलाने की कोशिश क्यों था, तुम पानी सीट ते वेही रहो। अच्छा हिदायतुल्ला कहते चांद से तो नहीं लेकिन सूरज से पर्दा जरूर कीजिए, नहीं तो वो सच में चेहरे का नूर चुरा लेगा। जब भी तो कह रही हूँ व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाए क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड है जो कि आप लोगों को सूरज के इन खतरनाक असरात से बचाती है, तो आप ट्राई करके देखिएगा ठीक है। और किशोर भाई कहते हैं चापे एक दफो तो जी भाभी जो सहेलियों आयू मुख्य खबर हुई को गानो गाइंदो हथ हिडा होडा कंदो आयस सामू वेठी हुयूं पोइ बस न विझो। बिल्कुल ईअं थींदो आहे।

ओकेरी छा त मानू डठा माने बोल आई दिल जेका वा स्लिप थी वई असा वट हिकडो लिस्ट में गानो आहे जेके मेशअप ही सॉन्ग आहे मेशअप सॉन्ग जेको आसे तमा के बुधराइंदासी ही तमाम खूबसूरत गानो थण वालो आहे ही न्यू ट्रैक आयो आहे आई असान से प्यारे अदे मुख्तियार मक्सी भाई आई बियो अली नन सा ग डुएट में आहे न भाजो मुखे थोड़ो नालो न सो मुख्तियार मक्सी भा के खैर सुणींदा आढ़ो काइंड पर्सन है सो ही उन्होंने नव गानो जो ठाको है मेशअप है असा सोचू पे तवा सा गड बुधू था तवा वो असो वणो है सोचो बुधू ढो खूबसूरत गानो मुख्तियार मक्सी भा अली डुइट आवाज में

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईंदड़ हफ़्ते ताईं ईरान सां वाइदो थियण जे लाइ पुरउमीद। तेहरान सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहण जी बिदावा। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त पैगामनि जी मुअतली ते ईरान मथां बम किराए नथा सघूं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऐं हिज़्बुल्लाह सां लबनान में जंगबंदीअ ते इतफ़ाक़ थियो आहे। इसराइल बैरूत ते हमला न कंदो ऐं नई फ़ौज मोकिलींदो। ईरान सां वाइदे बाद जंगबंदी में वाधि थींदी ऐं अबनाह अरबोज़ में बि बहरी ट्रैफिक बहाल थी वेंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जे रोकण बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो ॾखण लबनान ते हमला जारी रखण जो ऐलान। बैरूत ते बि हमलनि वारी धमकी बरक़रार। ईरान लबनान ते हमला जारी रहण ते अमेरिका सां ॻाल्हियूं रोकण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाह ऐं ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त इसराइल लबनान ते हमला बंदि न कया त संगीन नतीजा निकरंदा। हिते बि मौजूद अमेरिकी फ़ौज बि नतीजा भोगींदी। अल-क़ुदस फोर्स जे कमांडर इस्माइल कानी चयो आहे त लबनान ऐं गज़ा में इसराइली कार्रवाइयूं मदामत ते मजबूर कंदियूं। बाबर बंदर में बि अबनाह हरमूज़ जहिड़ी सूरतहाल पैदा थी सघे थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प पारां फोन ते ॻाल्हिबात दौरान नेतन्याहू ते सख़्त कावड़ जो इज़हार, खेसि नाशुक्रो ऐं चरियो करार ॾेई छॾियो। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिबि ट्रम्प नेतन्याहू खे लबनान ते हमला जारी रखण ते धड़का ॾिना ऐं बैरूत ते हमला रोकण जो चयो। सदर ट्रम्प चयो त आउं तुंहिंजी खल बचाए रहियो आहियां, आउं न हुजां हा त तूं करप्शन केस में जेल में हुजी हा। ट्रम्प जी ॻाल्हिबात दौरान नेतन्याहू रुगो ओके ओके चवंदो रहियो। कंहिं ते तनक़ीद करे या बुराई करे वोट वठण न आया आहियो। असांजी पार्टी खां सवाइ कंहिं गिलगित बल्तिस्तान जी ख़िदमत कई आहे त ॿुधायो। 2018 में हुकूमत ख़तम न कई वञे हा त गिलगित जी क़िस्मत तब्दील करे छॾियूं हा। गिलगित में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ चयो त गिलगित में हाइडल मनसूबो बि असां लॻायो, ॿिया मनसूबा अञा ताईं मुकमल न आहिनि थिया। गिलगित जी एयरपोर्ट खे वॾो करण जे लाइ शहबाज़ शरीफ़ खे चवंदुसि, वोट मिले या न, जीबी में लोड शेडिंग क़बूल न आहे, उहा ख़तम कई वञे।

0: कराची प्रेस क्लब आरो सिंध पेंशनर्स ग्रैंड अलायंस ए ग्रेवा सिंध तरफा मुतालबन की मंझता के लिए एहतजाज ग्रुप इंश्योरेंस पेंशन ए पगार में एक जेतरी वादा करण जो मुतालबो नवाबशाह में अबकाज सर ते सरकारी मुलाजमन जो एहतजाज बजट में सरकारी मुलाजमन के पगार में 100% वादा करण जो मुतालबो
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: और संगे मील उबूर इफ्तिता शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
1: GAFM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

ओके जी, सुबह बस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहतापुर मतली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी, आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से लगा रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, ये तो आप मुझे बताएंगे ना। और उसके साथ साथ अगर आप लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आपको आ चुका है इन प्रोडक्ट्स में जानते जानते, सुनते सुनते, समझते समझते, तो ये तो बात आप लोगों के अंदर जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग ये चीज जान चुके हैं कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा होना चाहिए। अक्सर मैंने लोगों को देखा जो बस लगा लेते हैं जो भी प्रोडक्ट उनको बताया जाता है। आजकल लोगों में ये जो फार्मूले लगाने का क्रेज है ना, ये पता नहीं क्यों बढ़ता जा रहा है। और फार्मूले आप जितना अवॉइड करेंगे अपनी जिंदगी में उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा होगा। तो जो है ना, आप हमेशा उन चीजों की तरफ आया करें जो लाइट वेटेड हो, ऑल स्किन टाइप के लिए हो, नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा होने वाले प्रोडक्ट हो, और लड़के लड़कियां सारे लगाएं, ठीक है। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले बताया, अभी मैं आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल तुम्हारा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम से गड तुम्हें मिले तो जनाब डी स्किन जो फेस वॉश जी मानू लगाने चाहन था, वो बिल्कुल जी डी स्किन जो फेस वॉश तुम लगाए सको था, जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया वो है। जो मतलब यो हों के अंदर अड़ी प्रॉपर्टीज हूं जी तुम्हारी स्किन के अंदर वही कर स्किन के वाइन्दून, तुम्हारी स्किन के हाइड्रेट रखन्दून, तुम्हारी स्किन के सफा हे प्यारो प्यारो चिकनो चिकनो मखण मखण बनाए छदीन। सो अगर तुम भी पाँच स्किन का परेशान तुम्हारे चेहरे से एक्नी निशाना डार्क सर्कल पोर्ट्स तुम्हारे ओपन है, ओपन पोर्ट्स उनकी वजह से तुम्हारी स्किन के काफी मसला अची वा, तो उनके भी अगर तुम बंद करण चाहो था तो तुम्हें बिल्कुल इस्तेमाल कर डी स्किन जो फेस वॉश। डी स्किन फेस वॉश तो बिल्कुल तुम लगाइंदा डी में तुम एक दफो लगाए, ब दफा लगाए, टे दफा लगाए, तुम्हारा फेस वॉश तुम्हारा मुंह तुम्हारी मर्जी, पर इन का न लगाजो, ठीक है। यानी कि चार पंज छह से अठ दफा न लगाजो, सिर्फ टे या चार दफा तुम उन अलावा जडी तुम पंजो फेस वॉश कयो था चंगे तरीके से पंजे फेस के क्लीन कयो था, वो रात के टाइम ते तमा जी स्किन ब्यूटी क्रीम के पंजे चेहरे ते अप्लाई कयो, ठीक है। जी स्किन ब्यूटी क्रीम जकाए तमा जे चेहरे ते जदी तमा अप्लाई कना ता तमा के महसूस थिनो कि एनी जबरदस्त क्रीम स्टर एडो जबरदस्त आ एनी मतलब मस्त तरीके से आना के

ओके जी, सो तव्हां सां गॾु मौजूद आहे, तव्हां सां कचहरियूं हलनि पियूं, तव्हांजा मैसेजिस आहिनि, तव्हांजे लाइ गाना हलायूं पिया, ऐं हा ॿी हिकड़ी ॻाल्हि बि यादि अची वई, तव्हांखे ख़ूबसूरती जा आहियूं पिया, सो ख़ूबसूरती जा राज़ त तव्हांखे ॿुधाईंदासीं न, जेके माण्हू जंहिंसां मतिलब प्यार कंदो आहे, जंहिंखे सुहिणो सुहिणो ॾिसण चाहींदो आहे, ऐं असां चाहींदी तव्हांजी ख़ूबसूरती बि वधंदी रहे ऐं तव्हां सुहिणा सुहिणा थींदा रहो। उन सां गॾो गॾु हिते गानो लिस्ट में मौजूद आहे तव्हां, ऐं गानो आहे तोखां पैसा न प्यार कबा, सिर्फ़ हिकु मर्द कया औरत जे।

दुनिया में जिंदगी में हिकड़ी गाल तो मुझे समझ में चाहिए मर्द जी को ना मर्द जात जिका है मतलब मर्द के समझण जो ना डाडो सोलो है आई कई मर्तबा ये थिनो आ मर्द के समझी भी मानो ना आ सके तो मर्द जिको मुखे लगनो आ सब खा वधिक अगर के कमायो है तो वो मर्द है वधिक कमाईदो है सब खा वधिक जिको कमाण वारो मानो पाण ते सफा थोड़ो खर्च कंदो है सो तमा जिके मर्द रात मुखे बुधो पया अगर तमा बिल्कुल तमा कमाईदा है वो कमायो पया तो थोड़ो पांजे भी मतलब सिर ते खर्च कंदा कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो स्किन फेस वॉश वो सोना सोना थो समझो था पांजो भी खाई न तो बदले में तय सो तुम पांच लाइ भी कर बेशक फैमिली के लिए भी कर मर्द जो सैक्रीफाइस करो बाबा सो मर्द की कदर कदा कर।

0: अच्छा हिदायत लाई ते बाबा तवां जो मोहब्बत हु आइन तवां ये समझन आयो
1: कोरिया तो सोहण लता
0: तोखा पैसा न प्यार रखबा हाने पैसा तवां प्यारा न कयो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी जो डी स्किन फेस वॉश वठी जो जे तवां सोणा सोणा थी वणो उन खे अलावा वास भाई दी अदी सिधो जवाब एक दफो मां अच्छा कलाम चंदो अदी कमरे में पहुतस डिठा मेहमान वेठा हुआ अदी पोए मां वरी पान के बे कमरे में अच्छा कमरे वठी गया अदी जेतरे

बैठा हुआ उतरे टाइम बंद हुआ इस कमरे में. ऐसी भी कोई बात नहीं थी वैसे कि आप खुद को बंद ही कर दे. और ये मतलब हाँ ये एक ऐसा सीन है जो मुझे लगता है कि सबके साथ हो चुका होता है. और जो चीज हो चुकी उसके बाद हमें पता नहीं क्यों शर्म क्यों आती है, ये बात भी है.

वासाई वाह वासाई वाह इहो अथव साईं कमाल जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाइण वारा माण्हू ईअं ई साईं बाह लोॾे पिया घुमनि तव्हां बि लॻायो तव्हां बि सुहिणा थियो तव्हां बि बाह लोॾे घुमो विलेज ये हमारे साथी जी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोर जा से दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सिद्रा हम आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं मेरी छोटी सी बेटी है जिसकी उम्र 15 महीने है मगर आपकी इतनी दीवानी है जो आगे आवाज सुनकर घूमती है आपका शो अच्छा यदि आगे आवाज में वाह क्या जादू है उसका नाम सुहाना है लेकिन हम उसको प्यार से बाजी सिद्रा कहते हैं तो वो बहुत खुश होती है मुजफ्फर मुदस्सर एंड मुबशिर सोलंगी भी आपके साथ मौजूद है क्या बात है यहाँ बड़े बच्चे बूढ़े सब भाई मुझे शौक से सुन रहे हैं थैंक यू जी थैंक यू

बशीर लिगारी हैं गोठ मीर खान लिगारी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर की आयो अमां जो प्रोग्राम लाजवाब आए रोज बुधन आयो असां के फोटो सरदारी जो को कलाम द बुधरायो भा बिल्कुल कल हिकड़े भा असां के फोटो सरदारी जे गाने जी फरमाइश कई हुई आई मु सर्च कयो गाना मतलब फोटो सरदारी जा बुधा त मुखे मतलब जको न उनजा शायद सॉन्ग समझ में ना आया ता खबर आसा जेंजी मानु एड़ो कलाम जके असां के थोड़ो समझ में नहीं आए सो मां कोशिश कयां थी कोई मुखे पांजे प्रोग्राम में हलाने जड़ो गानो मिली वे तो असां लाजमी हलाइना सी ठीक है तो मोहबत आई तुम भारन जो प्रोग्राम बुध आयो शौक से और बाजी ही वारो गानो तो हलाइंदा तो खा पैसा न प्यारा कबा मुमताज मलाई जी आवाज में इमरान अली बिरोई भाषा से मौजूद है बिल्कुल भा तुम गानो बुध हों मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते शुए महर भी मेरे साथ ही अस्सलाम वालेकुम बाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइस है बाजी टॉपिक मेरे साथ भी ऐसा हुआ है अच्छा विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो हमें सुन रहे हैं वेलकम करते हैं भाई को और हेंजी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आपके आप ही सिदरा आई एम फादिल लाशारी आज सॉन्ग सुनाइएगा मुझे ठीक है डेडिकेशन आपने सेंड करी है जी प्रिंस मौसल लाशारी इम्तियाज हुसैन लाशारी इरम दर्दे दिल लेला परी नूर फातिमा अनमोल आयजा यसर प्रिया कुंजर

बिल्कुल जी, मां लोड़े पयो घुम आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी करे, डी स्किन फेस वॉश भी लगाए, न मिले तो तुम डायल करो 03-15-799-0595 डायल करो, पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो आई वनी वठी अचो, ठीक है, मां लोड़े वनी वठी जो सो टाइम टू आई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था वापसी जल्दी तवाने मोटी नासी तवा गाडी ने वंजो ओ इते बैठा हो जो मां ओ ही वजी ओ ही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइंदा रहो सोना थींदा रहो

0: याद रखें, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343-0501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिता पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

के हो तो आवाज भी सिंधी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6।
1: आप भी चाहते हैं कि भाई गर्मियों के हिसाब से कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके पास मौजूद होना चाहिए जो आप लगाएं तो आप लोगों की खूबसूरती भी बरकरार रहे और आपकी स्किन जो है वो खराब भी ना हो, क्योंकि कई मरतबा ऐसा सीन हो जाता है कि जब हम गर्मियों का सीजन आता है ना, स्टार्ट होता है, तो हम जब अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं पहले से जो लगा रहे होते हैं, तो गर्मियों में कुछ ऐसा ही रिएक्शन आ जाता है कि हमारी स्किन जो है ना वो खराब होने के चांसेस हो जाते हैं या फिर खराब हो ही जाते हैं। तो आप भी ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये गर्मियों में भी इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जो कि विटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन से तैयार किया गया है। सिर्फ दो रातें आप इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अक्सर जो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि बाजी गर्म प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद क्या ऐसा होगा कि जो रिजल्ट हमें मिले हैं वो हमेशा रहे, और ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट हम छोड़ देंगे तो रिजल्ट्स क्या खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे या दोबारा स्किन खराब हो जाएगी। तो ऐसा कोई सी नहीं होगा। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं, डी स्किन फेस वॉश लगा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी जब आप इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद ऐसा नहीं कि जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ये एक नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, और इसके साथ साथ इस्तेमाल करने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा। और आप अगर अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं, कोई मजीद इनसे मालूम लेना चाहते हैं कि भाई कहाँ पर मिल रही है कहाँ पर नहीं मिल रही है, ये तमाम बातें अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप डायल करेंगे 03-15-799-0595। तो ये नंबर लास्ट में डायल कीजिए ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए।

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं हलवा पूरी भी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस मेरी नींद ही पूरी नहीं होती है, वो कभी नहीं पूरी होगी भाई। और किशोर भाई लिखते हैं कि हमें ज्यादा मुंह ना लगाया करें जनाब, हम कमबख्त वफाओं पर उतर आते हैं। अल्लाह जायबुदा। और आदिल कहते हैं टॉपिक आंसर में जब भी घर आता हूँ मेहमान नहीं होते हैं। अच्छा चलें ये भी अच्छी बात है। और अयाज अली खास के लिए मैं सुन रही हूँ वेलकम जी। ओगरी चाचा खालिद हमारे साथ कहते आई एम आउट ऑफ शो, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं जी, जब आप फ्री हो जाएं तो आराम से तसली से प्रोग्राम में आ जाएं। और लुबी कहती हैं कि तेरी आंखों की सहूलत हो मयसर जिसको, फिर वो चांद सितारे कहाँ देखेगा। क्या बात है।

लोग मुबारक चूंकि किस बात की मुबारक दे हाँ अगर आप लगाएं जी स्किन ब्यूटी क्रीम तब बात कुछ और हो सकती है, तो लगाइए जी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्यों नहीं लगा रहे हैं। और इसके अलावा ऐसा होता है ना कि जब आप क्रीमें नहीं लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए जो है ना डी स्किन फेस वॉश मौजूद है, तो डी स्किन फेस वॉश आप ट्राई कर सकते हैं। जब आप डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल करें तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि डी स्किन फेस वॉश जो है ये इतना स्टेबिलिटी इतनी मस्त है। और जनाब ये जो है ना तैयार किया गया उन तमाम चीजों को डाल, जो चीजें आपकी स्किन को और ज्यादा हेल्दी बनाती हैं, ग्लोइंग बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स हों या फिर जितने भी मसले वो सारे दूर हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाती है। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी का जो फेस वॉश ये इस्तेमाल करते हैं आपको इजिली कहीं से भी मिल सकता है। अगर आप सिटी में रहते हैं किसी भी सिटी में या फिर आप अपने गोट में अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ऐसा करें कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाएं और वहां से मालूम लें, अगर मिल रहे हैं तो बहुत बेहतरीन, नहीं मिल रहे तो फिर आपने डायल करना है 03 15 799 0595। अगर आप भी चाहते हैं स्टोर्स पर अवेलेबल डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंटी स्किन फेस वॉश तो नंबर डायल कीजिए और आप भी अवेलेबल कराइए। और हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी ट्यूसडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान। और कहती हैं टॉपिक नहीं डियर, आप फजीला हमारे साथ हैं, कहती सलाम टू माई स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब सुनने वाली सिस्टर्स को। ओके okay.

अच्छा सकलीन अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम करते हैं। इरम भी हमारे साथ हैं। इरम क्या कहती हैं? जवाब है नहीं नहीं नहीं। ओके जी ओके। और शहबाज कोसो भाई हमें सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं भाई को। अरीबा भी हमारा शो सुन रही है, अरीबा आपका भी बहुत शुक्रिया।

बिल्कुल जी, सुकून की तलाश में तो खैर हर कोई आहे, पर खूबसूरती की तलाश में भी हर कोई आहे। मुखे लगंदो आहे तो अगर तुम भी खूबसूरती की तलाश में आयो, तुम्हें कोई सुठो प्रोडक्ट नथो मिले, तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तरफ अची सको था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी तुम्हारी खूबसूरती की न सिर्फ बधाईंदी बल्कि तुम्हारी खूबसूरती जो ख्याल भी रखे थी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सब का बेहतरीन गाल तुम्हें बुधाईंदी हल तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डॉक्टर्स का फुल तहकीक कर तैयार किया प्रोडक्ट, डॉक्टर्स का मशवरा वी कर पहुंचाया वो है। अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहो था तो बिल्कुल बेफिक्र थी इस्तेमाल कर सको था, छोटे इनके अंदर कोई भी अड़ी चीज एड ना कई वही तुम्हारी स्किन के नुकसान पहुंचाए बल्कि फायदो ही फायदो डींदी बाबा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम लगा माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन से तैयार कई वही है, वाइटमिन ई बीट्स इनके अंदर मौजूद है, तुम्हारी ऑल स्किन टाइप जो लाइ मर्द मायू सब लगा ठीक है।

आंटी ॿियो कुझु न खपे, बसि डी स्किन ब्यूटी क्रीम खपे ऐं डी स्किन फेस वॉश बि खपे। ईअं अकेले न लॻाइजो, ठीकु आहे, गॾु लॻायो ॿई चीज़ूं।

चाहोगे जी, बहुत ही प्यारा गाना आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। एक और लास्ट ट्रैक हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो हम जरा सोचेंगे कि इस गाने को भी सुनते हैं जरा। और टाइम भी बड़ा तेजी से गुजरता जा रहा है आज के, वैसे दो घंटे मुझे ये लग रहा है कि बड़ी जल्दी गुजर गए। ऐसा आपको भी लग रहा है या सिर्फ मुझे ही लग रहा है? क्योंकि इतना प्रोग्राम इतना खूबसूरत है, व्हाइट एज इंडी स्किन ब्यूटी शो, प्रोडक्ट इतने खूबसूरत है, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट, इंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, लिसनर्स इतने प्यारे हैं, तो वक्त का पता ही नहीं चलता कितना तेजी से गुजर जाता है। और इसके साथ साथ भाई जान आमिर खान महेश्वर हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई हेलो हो गया आपका भी, और वासा भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्ला आपका भी बहुत शुक्रिया, आदिल आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ मौजूद है मैं इरफान सियाल साहब, कहते मैम आज एक ग्रेट होस्टिंग, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जमान हमें सुन रहे हैं, हेलो। अच्छा दर्द दिल भी हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है। ओके सो आप डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595, ये नंबर डायल कीजिए, इनसे कोई भी मशवरा लेना चाहते हैं और कुछ भी पूछना चाहते हैं बेफिक्र होकर पूछिए। मेहर इरफान सियाल साहब का ये कांटेक्ट नंबर है, इनसे राबता करके इनसे मालूमात ले सकते हैं जरा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, ये कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, ये तमाम चीजें और बातें आप इन्हें बताइए, शेयर कीजिए, नंबर डायल कीजिए। और साथ साथ यहाँ पर आपका हमारा साथ जो है वो इतना ही था, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात मेरी कल वाली प्रोग्राम में होने वाली, यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है रोजाना, बस जुम्मा को छोड़कर। सो वरी तमाम से मुलाकात मुझे सुभाणी थियण वारी है, सो पांजो लाही सारो ख्याल रखंदा। किथे का गलती थी हुजे को अड़ो लफ्ज़ गालायो जेको तमाम खे सुठो न लॻो हुजे, त हुन लाइ माज़रत मोकिलाणी न आहे। बाबू सन सलामत, साथ सलामत, अलाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: मौसम गर्मी का हो या पड़े ठंड,
1: नॉन स्टॉप लॉट्स ऑफ फन,
0: तबीयत हो डल या छाए।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6।
4: It's 3 PM. This time check is brought to you by
5: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
6: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
7: अब्दुल हरमुज़ जहिड़ी सूरत हाल पैदा थी सके थी।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां फोन ते ॻाल्हि ॿोल दौरान नेतन्याहु ते सख़्त कावड़ जो इज़हार खेसि नाशुक्रो ऐं चरियो करार ॾेई छॾियो। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिब ट्रंप नेतन्याहु खे लबनान ते हमला जारी रखण ते धरका ॾिना ऐं बैरूत ते हमला रोकण जो चयो। सदर ट्रंप चयो त आउं तुंहिंजी खल बचाए रहियो आहियां, ऐं न हुजा हा त तूं करप्शन केस में जेल में हुजी हा। ट्रंप जी ॻाल्हि ॿोल दौरान नेतन्याहु रुगो ओके ओके चवंदो रहियो। कंहिं ते तनक़ीद करे या बुराई करे वोट वठण न आया आहियो? असांजी पार्टी खां सवाइ कंहिं गिलगित बल्तिस्तान जी ख़िदमत कई आहे त ॿुधायो। 2018 में हुकूमत ख़तम न कई वञे हा त गिलगित जी क़िस्मत तब्दील करे छॾियूं हा। गिलगित में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ चयो त गिलगित में हाइडल मनसूबो बि असां लॻायो, ॿिया मनसूबा अञा ताईं मुकमल न आहिनि थिया। गिलगित जी एयरपोर्ट खे वॾो करण जे लाइ शहबाज़ शरीफ़ खे चवंदुसि, वोट मिले या न, जीबी में लोड शेडिंग क़बूल न आहे या ख़तम कई वञे। वरी वज़ीर मुराद अली शाह सां चीन जे कौंसल जनरल यान युडोंग जी मुलाक़ात, वितर्फ़ लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़। वॾे वज़ीर पारां सिंध जे ज़रई माहिरनि जी टीम खे जल्द चीन मोकिलण जो फ़ैसिलो। मुराद अली शाह चयो त ज़रई माहिरनि खे चीन मोकिलण जो मक़सदु चीन खां ज़रात बाबति वधीक सिखण आहे। चीन ऐं पाकिस्तान जा लाॻापा वक़्त सां गॾु वधीक मज़बूत थी रहिया आहिनि। पाक चीन दोस्ती ख़िते जे अमन जी बि ज़ामिन आहे। नए माली साल जी वफ़ाकी बजट 5 जून बदिरां 8 या 12 जून ते पेश थियण जो इम्कान। क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो सुभाणे थियल इजलास बि मुल्तवी, नोटिफिकेशन जारी। इजलास जी नई तारीख़ जो ऐलान बि न थियो। ज़रियनि जो चवण आहे त वफ़ाकी बजट 8 या 12 जून ते पेश थी सघे थी।

पेसगंज तालके में बदमनी खिलाफ बहराण हाईवे ते शहरन जा टिन धाराधार हंधन ते धरना पुलिस की खातिरी ते खत्म। शहरन फैजगंज तालके में वधंदर बदमनी खिलाफ एहतजाज कंदे बहराण हाईवे के टिन हंधन ते धरना हया हुआ। मुजाहिरीन पुलिस से गालन बाद धरना खत्म कया। तालके में अमन बहाल कराने जो मुतालबो।

0: नसीराबाद वेझो गोठ खदाई कलोड़ा बाहरा ज़रई ज़मीन तां पीसन जो तशद थियल लाश थे गोठल चांडे वासी पीसन मोहम्मद परल चांडो जो तशद थियल लाश मिलियो। मकतूल जे वारसन चयो आहे त संगावती तकरार था बिरादरी जे माण्हुनि तशद करे पीसन खे क़तल कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। सेठा जा मेथा बंदन घरां सॾे क़तल कयल नौजवान जे वारसन जो महिराण हाईवे ते लाश रखी धरणो। मकतूल अली ढींगो जे वारसन जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो। ठुल में 12 ॾींहं अॻु चौकीदार खे क़तल कंदड़ वॾेरे जे पुट बिलावर सरकी खे पुलिस गिरफ़्तार करण में नाकाम। पुलिस मकतूल मोहरत जे क़तल केस में नामज़द जवाबदार बिलावर सरकी जी गिरफ़्तारी जे लाइ कख भञी बीणो न कयो। बिलावर सरकी जे वारसन राजूणी जूं कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। मकतूल मोहरत कुटुंब ते दबाव वधी वियो। कराची जे इलाइक़े गुलिस्तान जोहर में पुलिस जी कार्रवाई। मंशियात फरोश औरत शीरीन उर्फ शरीना गिरफ़्तार। मंशियात फरोश शीरीन उर्फ शरीना खे ॿिनि पुटनि समेत कामरान चोरनि वटां गिरफ़्तार कयो वियो। पुलिस चयो आहे त शीरीन उर्फ शरीना घर जी दरीअ मां सिधीअ रीति मंशियात विकिरो कंदी हुई। आदिलपुर वेझो नौजवान नारी सां वालदेन साम्हूं मुबैना इज्तिमाही लजारट वारे केस जी ॿुधणी। सेकंड एडिशनल सेशन जज वीरपुर माथेलो जी अदालत जवाबदार अमीर दीन उर्फ लालू चाचड़ जी ज़मानत रद्द करे छॾी। पुलिस जवाबदार खे अदालत ॿाहिरां गिरफ़्तार करे वरितो। जवाबदार मुश्ताक चाचड़ ऐं संदसि भाउ निसाह चाचड़ ज़मानत ते आज़ाद आहिनि। अठहठि मोरी भरिसां सेठारकी शाख में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादकारनि जो एहतजाज। शाख जी पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। आबादकारनि चयो त 10 सालनि खां सेठारकी शाख जी पुछड़ी ताईं पाणी नाहे पहुतो। आबाशी अमलदार बासरनि खे पैसनि ते पाणी विकिरो करे रहिया आहिनि। पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाए फसल बचाया वञनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: It's 3:15 PM.
2: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: उधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: एक और संगेमील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

बात होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88
1: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती हुई।
3: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: जी FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे एतबार किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: तुम्हें बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना फिर तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना गेस्ट हाउस। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारिम को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, वो लड़की उसको नहीं मिलेगी, खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
2: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईंदड़ हफ्ते ताईं ईरान सां मुआहिदो थियण लाइ पुरोमेन तहरान सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त पैगामनि जी मुअतली ते ईरान मथां बम किराए नथा सघूं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऐं हिज़बुल्लाह सां लिबनान में जंगबंदीअ ते इतफ़ाक़ थियो आहे। इसराइल बेरो ते हमला न कंदो ऐं न ई फ़ौज मोकिलींदो। ईरान सां मुआहिदे बाद जंगबंदीअ में वाधि थींदी ऐं आबनाह हुर्मुज़ में बि बहरी ट्रैफ़िक बहाल थी वेंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे रोकण बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो ॾखिण लिबनान ते हमला जारी रखण जो ऐलान। बेरो ते बि हमलनि वारी धमकी बरक़रार। ईरान लबनान ते हमला जारी रखण ते अमरीका सां ॻाल्हियूं रोकण जी धमकी ॾेई छॾी। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चयो आहे त लबनान ते हमला जारी रहिया त ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरानी पार्लियामेंट जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त इसराइल लबनान ते हमला बंदि न कया त संगीन नतीजा निकरंदा। खिते में मौजूद अमरीकी फ़ौज बि नतीजा भोगींदी। ब्रिगेडियर जनरल असदी चयो आहे त अमन वारो मुतालबो कॾहिं बि पूरो न थींदो। जंग लाइ तयार आहियूं, ईरानी क़ौम कोन झुकंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां फोन ते ॻाल्हि ॿोल दौरान नेतन्याहू ते सख़्त कावड़ जो इज़हार, खेसि नाशुकरो ऐं चरियो करार ॾेई छॾियो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिब ट्रंप नेतन्याहू खे लबनान ते हमला जारी रखण ते धड़का ॾिना ऐं बेरो ते हमला रोकण जो चयो। सदर ट्रंप चयो त आउं तुंहिंजी खल बचाए रहियो आहियां ऐं न हुजां हा त तूं करप्शन केस में जेल हुजी हा। ट्रंप जी ॻाल्हि ॿोल दौरान नेतन्याहू रुगो ओके ओके चवंदो रहियो।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल। ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर था भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंधी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खां भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा।
2: आज एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा नाम आने।
1: बदकिस्मती इस मुल्क का कि हमारे सियासतदान ऐसे हैं, वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे मगर इस आने वाले बजट में इंशाल्लाह ताला वजीर आजम साहब ऐलान करेगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। मुस्लिम उम्मा में किसी एक ममालिक के पास एटम बॉम्ब है तो वो आपके पास। एक एटम बॉम्ब कायदे आवाम जी जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी।
3: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्लामाबाद जो वाहिद प्रोग्राम आहे जेको हर गरीब ताईं पहुचंदो आहे। बदकिस्मती सां हुकुमरान BISP खे खत्म करण चाहिन था। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खिलाफ साज़िशूं नाकाम थींदियूं। असां BISP खे बचाईंदासीं। बजट में वज़ीर आज़म खां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी फंड्स में बि वाध कराईंदासीं। इस्कर्दू में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त अड़ी ही आइनी तरमीम वारा अख़्तियार गिलगित बल्तिस्तान खे बि मिलंदा त मसला हल थी वेंदा। अमीर खे वधीक अमीर करण वारी कहिड़ी मुआशी पॉलिसी आहे? गिलगित बल्तिस्तान जे वसीलनि ते हितां जे अवाम जो हक़ आहे जंहिंखे तस्लीम करणो पवंदो। गिलगित बल्तिस्तान वासियुनि खे वोट ज़रिए अवाम दोस्त या अवाम दुश्मन हुकूमत जो फ़ैसिलो करणो पवंदो। ईरान सां गॾु समूरी दुनिया जंग जो बार बर्दाश्त करे रहियो आहे। दुआ आहे त फील्ड मार्शल जूं जंग ख़तम कराइण वारियूं कोशिशूं कामयाब थियनि।
4: आज जब मैं आया हूं तो जो मैंने हुलिया देखा है यहां पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहां है। चाहता था कि यहां बेतहाशा तरक्की हो, यहां के लोग रोजगार पे फायज हों। उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। पैसा जो आप पे लगना चाहिए था क्यों नहीं लगाया गया? कहां लगाया वो पैसा? यहां अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, पानी से जो बिजली पैदा होती है वो किसने लगाई? हमने। और मुझे बताए किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहां पे ईंट भी रखी हो। मुझे अफसोस होता है कि एयरपोर्ट जो मेरे जमाने में था आज भी वही है। एक एयरपोर्ट को बड़ा करके यहां तो बोइंग जेट्स आने चाहिए थे, जैसे स्कर्दू जाते हैं। कि आप वोट दोगे तो मैं ये करूंगा, वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा।
3: गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती कम छो नाहन थे? 2015 ईस्वी में 100 अरब डॉलर देने बावजूद अजा तीन द्यामीर भाषा डैम छो नाहे ठो? बिजली की लोड शेडिंग छो खत्म ना थी? 2018 ईस्वी में हुकूमत खत्म न थे हा तो मुल्क घनी तरक्की करे वे हा? गिलगित में चूंड जलसे के खिताब करे अगुणे वजीर आजम नवाज शरीफ चो तो कहते तनकीद करे या बुराई करे वोट वठण ना आयो? असांजी पार्टी का सवाए कें गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत कई है तो बुधायो? बया मनसूबा अजा तक मुकम्मल ना थिया?

0: वफ़ाक़ी हुकूमत पारां पीपुल्स पार्टीअ जा ख़दशा ख़तम थियण ताईं नए माली साल जी बजट पेश न करण जो फ़ैसिलो। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ सां ॻाल्हियुनि जो टास्क अहम अॻवाननि हवाले। ज़रिए जो चवण आहे त बिलावल भुट्टो बजट खां पहिरीं अहम कानून साज़ी जी मुख़ालफ़त कई। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीर दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी कुझु नुक़्ता रखिया आहिनि जिन ते ॻाल्हियुनि लाइ हुकूमत अहम अॻवाननि खे टास्क ॾिनो आहे। पीपुल्स पार्टीअ सां मामला तय थियण बाद वफ़ाक़ी बजट पेश करण जो इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि मैशियत जी तरक़ी ऐं मुआशी सुधारनि बाबति अहम इजलास। वज़ीर आज़म मैशियत जी जटादार तरक़ीअ लाइ सनअती सुधारनि ऐं परडे॒ही सीड़पकारी जी वाधि खे अंटर करार ॾेई छडि॒यो। शहबाज शरीफ चयो त सनअतुनि जी तरक़ीअ सां गॾु बरामदात वधाइण हुकूमत जी तरजीह आहे। सनअती तरक़ीअ जो मक़सद अवाम जी भलाई ऐं बहितरी हुजणु घुर्जे। वज़ीर आज़म पारां वज़ारतुनि खे माहिरनि सां नतीजा ॾींदड़ मुशावरत यकीनी बणाइण जी हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईंदड़ हफ़्ते ताईं ईरान सां मुआदो थियण लाइ पुरोमेन तेहरान सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त पैगामनि जी मुअतली ते ईरान मथां बम किराए नथा सघूं। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऐं हिज़बुल्लाह सां लिबनान में जंगबंदी ते तप थियो आहे। इस्राइल बेरो ते हमला न कंदो ऐं नई फ़ौज मोकिलींदो। ईरान सां मुआदे बाद जंगबंदीअ में वाधि थींदी ऐं आबन हुरमज़ में बि बहरी ट्रैफ़िक बहाल थी वेंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे रोकण बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो ॾखिण लबनान ते हमला जारी रखण जो ऐलान। बेरो ते बि हमलनि वारी धमकी बरक़रार। ईरान लबनान ते हमला जारी रखण ते अमरीका सां ॻाल्हियूं रोकण जी धमकी ॾेई छॾी। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ़ चयो आहे त लबनान ते हमला जारी रहिया त ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त इसराइल लबनान ते हमला बंदि न कया त संगीन नतीजा निकरंदा। खिते में मौजूद अमरीकी फ़ौज बि नतीजा भोगींदी। ख़ातिमुल अंबिया जे ब्रिगेडियर जनरल असदी चयो आहे त अमरीका जो सरेंडर वारो मुतालबो कॾहिं बि पूरो न थींदो। जंग लाइ तयार आहियूं, ईरानी क़ौम कोन झुकंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां फोन ते ॻाल्हि ॿोल दौरान नेतन्याहू ते सख़्त कावड़ जो इज़हार, खेसि नाशुकरो ऐं चिरियो करार ॾेई छॾियो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिबि ट्रंप नेतन्याहू खे लबनान ते हमला जारी रखण ते दड़का ॾिना ऐं बेरो ते हमला रोकण जो चयो। सदर ट्रंप चयो त आउं तुंहिंजी खल बचाए रहियो आहियां, आउं न हुजां हा त तूं करप्शन केस में जेल में हुजी हा। डोनाल्ड ट्रंप जी ॻाल्हि दौरान नेतन्याहू रुगो ओके ओके चवंदो रहियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: कराची, हैदराबाद, दादू, सीपुरा, जेकबाबाद, नवाबशाह, क्वेटा एंड चित्राल। You're listening to the Hot FM Network.

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुजर खां भी दर नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: या ही सिंध जी दिल 1.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे सकी।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा मियर नहीं का चीज न आकड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।